0: लोक चाँचरी
1: लोक चाँचरी उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ लोक चाँचरी
0: लोक चाँचरी।

0: सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क
1: लोक चाँचरी
2: लोक चाँचरी उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ लोक चाँचरी
1: लोक चाँचरी।